0: में दीवार से क्यों है खड़ी यादें अब नफरतों के पैमानों से क्यों है
1: 98.5
2: 2 000 FM